से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

हेलो फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुनना मत मत स्वागत है। मैं हूं तुंदी आरजे नेहा शर्मा, डोगरन सोल। ते मेरा जिला डुग्गर प्रदेश है वो वीर ते वीरांगनाएं कन्ने प्रोचे दा है। इंया के एक डुग्गर प्रदेश ते शूरवीर है जिन्हें की दुश्मने भी सलाम किता। उन्दी जेड़ी वीर गाथा हैं वो अज भी आर्मी च मिलिट्री च लोग एक एग्जाम्पल दे तौर पर जरूर शेयर करते ने। ते जिन्हें भी इतिहासकारों ने इन्होंने ही पता लगी गए होना है कि एक कौन है। जिया कि मैं तुसे आख्या कि वो पहले शूरवीर है जिन्हें दुश्मने सलाम किता। उन्दी समाधि दुश्मने दे इलाके च बनी ठीक युद्ध दे बाद। ते ये जिहड़ा गौरव है अपने आप च, ये सिर्फ इतिहास च एक के बंदे गीत होएदा है। ते ये बंदा कौन है सोचो सोचो। तुस पहले सुनो है मिठा हरा गीत, ओहदे बाद मैं दसनी हां, मैं कुंदे गल करानी हां।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुंदा स्वागत है। तो मैं गल कर रहा थी जनरल जोरावर सिंह दे शौर्य दी। ते इतिहासकार दस दें कि शिव भक्त है बहुत बड़े, ते इंदा मन हा जेड़ी कैलाश मानसरोवर स्थली शिव जी भगवान हुंदी ओह भारत देश की सीमा के अंदर गे होनी चाहीदी है। इसी मंशा लई इन्हें 1841 पर तिब्बत पर कूच करी दिता। ते आखदे ने कि लड़ाई बड़े महीने चली, साड़ी जीत होनी ते पक्की गए ही, पर बर्फीली हवाएं ते मौसम ने ते खराब औजारे उन्ना साथ नहीं दिता। खाने पीने की कमी भी होई गई, उपरा मौसम की मार ये नहीं पई कि इंदी टोली दे बड़े सारे बंदे जान देनी पई, ते उन्दे चा एक ए भी है। पर आखदे ने तिब्बत दे लोग अज भी गल करदे ने कि बड़े शौर्य वीर ते बड़े गे पराक्रमी है। इसे आस्ते उस स्थान पर अज भी इंदी एक समाधि बनाई दी गई है, ते इत्थे दे लोग अज भी कोई न्याणा जमदा है ते उत्थे मत्था टकाने की लई जांदे ने। आखदे ने कि अस इहे प्रार्थना करने आ कि साडा जेड़ा भी ये न्याणा है ये उन्दे आंगर के पराक्रमी वीर ते शूर वीर बने। ते दोस्तों, ये अपने आप च एक मिसाल है। उम्मीद है तुसी पसंद आई हो मेरा अज दा एपीसोड। मैं फिर परती आ गई, उम्मीद दियो इजाजत, नमस्कार।
1: હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં ને? હું છું તમારી મજાની મિત્ર માનસી. અનેકતા મે એકતા કહેવત ભલે ને આપણે સમગ્ર હિન્દુસ્તાન માટે વાપરતા હોઈએ, પણ માત્ર ગુજરાત માટે પણ એ વાત સાચી જ પડે છે. ગુજરાત રાજ્યને વિવિધ પ્રકારના ભૌગોલિક ક્ષેત્રોમાં વિભાજિત કરી શકાય. અલગ અલગ બોલી, પહેરવેશ અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓમાં વસતા ગુજરાતીઓએ સાચે જ વિવિધતામાં એકતા કહેવત પરિપૂર્ણ કરી.

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: SNS Lawyers को इन्ना सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ

0: Sound Live and Cellular Point present AmiWare Live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valio Ready Hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: A1 Cakes and Pastries 1997 to thadi seva karda aa reha hai. Cakes, pastries, mithaiyan, samose te party decoration bhi le sakde ho. Nakal karke cakes ate pastries bechan walean to bacho te Jaspal Nagra nu phone karo.
2: Namaskar, Sasikal, main aapka Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mata Ji Ki Chowki. Maan tu badaya mera dukh saare taal ke. On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hoon ki ye shaam म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी. हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब ने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है, सबके साथ आना है. सो गाइस, सी यू ऑन फोर.

0: September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देखी उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: मैं आ जा तो मैं लाल नचिए नचिए पाँच बाहपा मैं आ जा तो मैं लाल नचिए.
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो ता ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दियां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900.

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरिया होएगा और आज का दिन भी अच्छा चल रहा होएगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के 1 बजे वतनों दूर तुहाडे लई पेश किया जाएगा, हिंदुस्तान तो खबरां होणगियां। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है। अज 6:32 ते सूरज आया 8:07 ते चले जाना। मामा चांसियों अज 6:39 ते शाम नूं आएगा 2:30 ते उन्हें चले जाना। अज दा तापमान 23-24 डिग्री तक रहेगा। सारा दिन बदलवाई नाल हल्की हल्की बारिश सारा दिन पैंदी रहेगी। कल नूं 26 डिग्री तापमान, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड ते हल्की हल्की बारिश पैण दे आसार नजर आउंदे ने। बुधवार नूं भी कुछ ऐसा ही मौसम है, तापमान 27 डिग्री। थर्सडे नूं भी ऐसा ही मौसम है, तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं भी ऐसा ही मौसम है, लेकिन थंडर स्टॉर्म चखड़ चोले काफी कुछ होगा, तापमान 26 डिग्री। संडे सैटरडे नूं जाके सूरज चमकेगा, तापमान 25 डिग्री रहणगे। ब्लूज वाले कल 8 फर्क नाल यंकी तो हारे और इहदे नाल नाल अज छुट्टी है। कल कैंसर सिटी रॉयल उहनां दे मैच होणगे। उधर इंग्लैंडियां ने यूक्रेन नूं कहा भी कोई ना मित्र, असीं तेरे नाल हां। उस गुस्से जाके जेड़ा मास्को है उन्हें आपका जेड़ा अम्बेसडर यूके तो वापस सद लिया है। इंडिया का मैच होया क्रिकेट का, श्रीलंकन ने बनाए 8 रन 2 विकटा से, लेकिन उस तो पहला इंडिया वाले ने 503 रन बनाए थे 9 विकटा से। अजकल सैकल मोटरसाइकल वाले सजे खबे भजाई जाते हैं, लेकिन हैमिल्टन के सैटरडे वाले दिन शाम जे नूं एक गड्डी विच एक सैकल वाला टकराया, उस बेचारे की मौत हो गई। AI टेक्नोलॉजी डिपेंड करता किहड़े पासे तुसी यूज करदे हो, चंगी भी है कई कारण करके। जिहड़ी नकली रील बना चढ़ाउंदे AI नाल, माड़ी भी है। फॉर एग्जाम्पल साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी वाले ने दस्या कि एडवांसिंग न्यू आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस नूं यूज करके, इन्हां दे टूल्स यूज करके एक नवी जिहड़ी ड्रग बना रहे ने जिहड़ा कि कैंसर नूं छेती रिकवर करन विच कवर करेगा।
1: मिरर्स फ्री विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800 905-671-1800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेने खरीद लिया गहने?
4: किथे, छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना।
3: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल ता तेरी सही है भेन, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन?
1: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच तुहानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 9052308800।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, 3 लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL because we care.
0: Are you ready? Tikka Junction Lay 647-429-4040. Catering karoni hai choti vade function lay, no problem. 647-429-4040. Live cooking karoni hai kare, no problem. 647-429-4040. Tusi inna de banquet hall ya lounge vich choti vadi party karni hai, no problem. 647-429-4040. 647-429-4040.
6: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
7: Chintu putta?
8: Haan ji madam ji.
7: Mainu eh dass ke tu vadda ke tere pita ji vadde?
8: Madam ji main.
7: Murkha o kive?
8: Madam ji dekho na, main hun apni mummy naal nahi sunda par mere papa je vi sunde aa.
9: फिट्टे मुँह तेरे।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजीनियर लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
4: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
3: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
4: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
5: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
4: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
5: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
4: 416-509-1509
5: और विजिट insuranceforyou.ca।
6: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Perth.
7: Je mainu yaar na mile te mar jaawa, je mainu pyaar na mile te mar jaawa.
8: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, te tusi sun rahe ho Vatnon Dur with Sukhi Nijjar.

करें, अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।

0: जी दोस्तों प्रोग्राम समाप्त करने का समा चुक्या हूँ तुम सुनोगे देश देश प्रदेश प्रोग्राम तुहानू आटो इंश्योरेंस की जरूरत थोनू होम इंश्योरेंस की जरूरत तुहानू कमर्शियल इंश्योरेंस की जरूरत तो तुम मेरे नाल संपर्क कर सकते हो मेरा नंबर नोट कर लो साडे कोल बहुत सारे इदा के ग्रुप होंगे ने जिद असू बहुत भारी डिस्काउंट दवा सकते हैं कोई 10% 15% 20% ईवन के 25% तक भी डिस्काउंट होंगे ने मेरा नंबर नोट करो 6476278820 647 687 88 भी उपर तुम मेरे ना संपर्क कर सकते हो तो मैनू देवो इतनी इजाजत रब रखा सत श्री अकाल
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: रेडियो प्रोग्राम देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो वंस अपॉन ए टाइम साढ़े शहर के बच्चे आ रहे हैं राहत फतेह अली खान साहब लैके बड़ा भट्ठा संगीत पूरा ऑर्केस्ट्रा
1: जी
0: संडे सितंबर 7 नहीं सितंबर 27 संडे सितंबर 27 7 बजे शाम को स्कॉशिया अरेना के बीच टिकटा उपलब्ध ने टिकट मास्टर डॉट सी ए जाके हुण तुसी बुलाओगे राहत फतेह अली खान साहब दी टिकटां तां तुहानूं अच्छियां फ्रंट ते मिल जाणगियां बड़ी वधिया
1: एंड
0: क्लोज है जी ते ए वी सितंबर 27 नूं हो रिहा शो ते इहदी टिकटां भी उपलब्ध ने टिकट मास्टर ते हुण तों ही अवेलेबल है
1: जी बिल्कुल ते जे तुसीं अपने घरां नूं पेंट करवाउणा चाहुंदे हो जां अपने ऑफिस नूं पेंट करवाउणा अपने किसी रेस्टोरेंट नूं वेयर हाउस नूं किते भी तुसीं रेजिडेंशियल या कमर्शियल किते भी जगह दे विच पेंट करवाउणा होवे तां संदल पेंटिंग नूं याद रखो प्रोफेशनल पेंटर्स ने काफी लंबा तजुर्बा इन्हां दा ते जिथे किते भी तुसीं रहिंदे हो सारे GTA एरिया दे विच तुहानूं सर्विसिज दिंदे ने ब्रैम्पटन मिसिसागा नाइगर फॉल्स कैम्ब्रिज लंडन गल्फ कितने भी किसी भी एरिया दे विच तुसी रहने हो तुसी हर जगह दे उपर इन्हां दे कोलों अपनी सर्विस लै सकदे हो अफोर्डेबल हुंदा है बट नेम ब्रांड पेंट ही यूज करदे ने संदल पेंटिंग सुखजीत सिंह जी नूं कॉल करो नंबर है 6478223313 6478223313 संदल पेंटिंग दा नंबर है
0: रेडियो प्रोग्राम देश परदेश नाल जुड़े हुए टेलीफोन नंबर स्टूडियो 905-564-6444 905-564-6444 स्टूडियो नंबर ने साढ़ा साथ तुहाडे नाल थोड़ा जिहा टाइम होर हैगा हाले तकरीबन 4 बजे के 10 मिनट तक ते हुण आपां गीत लईए एक वधिया जिहा फरमाइशी गीत सी
1: जी
0: अद्धी रात तक मैं पढ़दी है तू बन के कुड़ी वे मुंडिया है खाता लिखे मैनू पुराने जमाने दे गीत ने अज कल तां कोई फर्क नहीं पैंदा बड़े उदों लुक छुक के इश्क करने पैंदे सी अज कल तां डेटा होंदियां होर होंदे बड़ा कुछ एनीवे गीत इंजॉय करो रेडी प्रोग्राम देश परदेश नाल जुड़े तुसीं।

0: हेलो एम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905-564-6444
1: 905-564-6444
2: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो

0: सादा काम है, आप स्किल डेवलप करते, गवर्नमेंट आपको फंडिंग आपके खाते में देती है, जब फंडिंग आ जाती है आपके खाते में तब हमारी छोटी सी वीजा $199, ट्रांसपेरेंट है हम। और मतलब जो लोग सेकेंड ईयर का कोर्स करने आते हैं, जो लोग पहले से जिनको पता है राइट, जो प्रोसेस से को थ्रू कर चुके हैं, वो जब हमारा शो सुनते हैं आपके थ्रू, वो राइट अवे रिटेन हो जाते हैं, सर हमने पहले किसी को कमीशन दी थी, आप इतने कम रेट में अच्छी तरह काम कर रहे हो, राइट अवे रिटेन। तो इसलिए जो नए लोग भी वो भी पीछे ना रहे, फंडिंग हासिल करें और स्किल भी हासिल करें।
1: एंड सर पैसे कितनी देर में आ जाते हैं?
0: आप मान के चलें एक से लेके 3 महीने तक एवरेज टाइम हम बोल के चलते हैं, 2 से 2.5 महीना इतना रहता है, बट हम 3 महीने बोल के चलते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में फंडिंग आती है, आज भी 8 बंदों के अकाउंट में फंडिंग गिरी है।
1: क्या बात है, वेरी गुड। एंड फंडिंग लो, पैसे लो भी, सरांश ने मिलो, इन्हें बकायदा दफ्तर है, दफ्तर जाओ सरांश। बड़े लोगों को लगता है यार हमें ये फोन पे कैसे पैसे दिला देंगे, फिर मैं बताता हूँ कि यार इनका इतना सोना ते बहुत ही खूबसूरत दफ्तर है, तुसी जाओगे थोनू कोकोनट वाटर पिलाया जाएगा। सो मिलो जाके सरांश नू, नंबर है 4372643175, 437-264-3175। सरांश तुसी भी नंबर ते एड्रेस फिर दे दियो।
0: हाँ जी, एड्रेस है जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, प्रॉपर बिल्डिंग है, हाई क्लास जगह पे ऑफिस है, हाई क्लास ऑफिस है, 6 बंदे काम कर रहे हैं आपके लिए, पीछे ना रहिए, फंडिंग हासिल करें, स्किल हासिल करें, नंबर नोट करें, अब भी कॉल करें, असेसमेंट कराएं, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175।
1: वेरी गुड, 437-264-3175। सरांश बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
0: थैंक यू
1: सर। सो मैं पहला भी दस के हटिया, एक ऐसे लेजेंड नाल इंटरव्यू असी करन जा रहे हैं, तुसी आप कहोगे नवी यार वाकई इन्हां दे गाने किने नहीं सुने, इन्हां दी आवाज दे विच क्या दम है, क्या सुरीलापन है। ते बहुतिआं नूं इह नहीं पता कि बड़े वड्डे वड्डे जिहड़े कहिंदे कहाउंदे आर्टिस्ट ने उन्हां दा म्यूजिक भी शुरुआत दे विच इन्हां नहीं कीता। सो म्यूजिकली गिफ्टिड एक आर्टिस्ट, ते बड़े वड्डे वड्डे गीत यार, तुसी आप कहोगे नवी यार गाने कित्थे नहीं चलते। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, इंटरव्यू असी बड़ी जल्द करन जा रहे हैं, मैनू बस गो अहैड मिल जाए कि नवी चक दिओ फटे, ते फिर बहुत ही जल्द कर रहे हैं। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी लहरा नवी सिद्धू दे नाल। अपनी बिजनेस दी एडवरटाइजमेंट दे लई या होर कोई भी जानकारी लैण दे लई कॉल करो 6475041557, 6475041557। पंजाबी लहरां या चलो AM 530 नूं 24 घंटे 7 दिन अपने फोन ते डायल करके सुनन दे लई डायल करो 416-477-2040, 416-477-2040। पंजाबी लहरां या चलो AM 530 नूं दुनिया दे किसी भी कोने दे विच सुनन दे लई अज ही डाउनलोड करो पंजाबी लहरां दी ऐप PUNJABILEHRAN। जे तुसी साडी ऐप डाउनलोड कर चुके हो तां उस नूं अपडेट भी जरूर करो। स्टूडियो दे विच लाइव कॉल करन दे लई फोन नंबर है 905-673-3337, 905-673-3337। सो गेट रेडी, मैं जिवें जिक्र कीता कि असीं इक इंटरव्यू बड़ी खास करन जा रहे हैं, ओहदे लई फिर सुणियो यार, तुहानूं बड़ा आनंद आऊगा। अपने यारां दोस्तां नूं भी कह दो कि पंजाबी लहरां AM 530 ऑन कर लैण, ते बहुत ही आनंदमई इक सुकून थोड़ा।